0: हाँ जी बिल्कुल बबरक रोड फरमाइश बने था सो गाना और बिल्कुल बबरक रोड बोम अवरेदली था सो बोम अवरेदली था सो बहुम खे खुंदुना मजीद रखिस्ती और बबरक रोड चिकम गाने फरमाइश कड़ा उम्मीद दागा बहुम अवरेदली यो कालर बगोरू बे बो फरमाइश पर को गोरु चिम सर दाल पल के बल कालर चुप जी दिन जी असलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी रोड चो खबर कहो जी कम जी ना चौक जी चौक खबर कहो जी
1: जिला मन बेटा ना उमर अडे ना
0: जिला मन बेटा ने उमर अडे ना प्रोग्राम से जिला मन बेटा ने और कला धरता भाई जी
1: मना जी खुशहाल हो
0: जी जी
1: दाऊद भाई यार तब चल रखना मजबूत हो
0: जी आवाज मुकट की जी जी जी जी जी आवाज मुझे कटकी जी गिलमन अरोरा देर माजरत रता सो आवाज माता सही ना जी कट कट रहा जी आप आवाज बंद न पाए
1: जी बस मत
0: जी जी
1: बरमजान
0: टपे बिल्कुल था इंशाल्लाह कहूँ जी डेरा मेहरबानी जी तासु मुश्ता काल वकड़ा जी डेरा मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम गिला मन बेटा ने और आवाज कट के दे नो बिल्कुल बरमजान पा आवाज बने दे टपो और दुल फरमाइश लारी नो बिल्कुल मुश्ता आमद शेरानी और चिकम काल कड़ा बे मापा ख्याल काल ड्रास है या काटकड़ा नो बिल्कुल च फरमाइश नोकड़ा नो बिल्कुल अगता माल तरफ ना आदा गाना डाले दा नो बिल्कुल राजो दे अहमद शरानी उरोर ता दा गाने माल गाना माल तरफ ना डाले दा ता सुम रसरा और अहमद शाह शेरानी उरोर दे उमा वावरी रसरा नो बिल्कुल अचिकला बे वापस रजु नो बिल्कुल तासो फरमाइश नो ऊपर को तासो काल नो बाटन को नो राजो अहमद शेरानी चिकम रोर काल कड़ा काल कट सवे उन अगत माल तरफ ना दा गाना डाले बल्कि तासो टोला और दिन को तजी छोरो उमा आवाज और टोलो तमाल तरफ ना दा गाना दे डाले

बिल्कुल तासु बगाना उम्र सरावर और सरावर सरा माता इजाजत उम्र कहूँ बिल्कुल आखिर अच्छे मुश्ता यो बल फरमाइश खड़ा हो आमिर खान और चिकम फरमाइश खड़ा होना बिल्कुल आगा बहुम पर मासरा प्रोग्राम यो मिनट टाइम पाता था बिल्कुल मुझा प्रोड्यूसर से बिल्कुल तशरीफ रावड़ा था माता वलार द पसार छे भातम का वायज यती बस टाइम पूरा था ना बिल्कुल आमिर खान रोड पर फरमाइश पाने था गाना बसा और माँ तारा को इजाजत इंशाल्लाह का जिंदगी अब्बल मंगल तब बेहता सो माँ मुलाकात कीजिए कच्चा काल माने में ट्रेंड करा ना बिल्कुल डेर माजरत दलोया लापामान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान रेडियो मन पाइंदाबाद।

अस्सलाम वालेकुम, बाय हाउ आर यू, बाय क्रीम एंड फेस वॉश आए हैं कि नहीं, सबको सलाम। आई एम जिया जुई जमा खुरे नोटेंशन डायमंड फॉर्मूला क्रीम हरो वाली दीसी वीर सरा वेजमसी फेस वॉश हरो वाले दशा मिला विशेषा।

हाँ जी, सलाम अलैकुम कबूल के नाम भाई, आवाज करक रेडियो पे बिल्कुल साफ और मौसम की तरह अच्छा आ रहा है। मैं जीनत, मेरे साथ ईमान भी आपका शो अच्छी अच्छी बातें सुन रही हैं फ्रॉम बनू पीपल से। ज्यादा थैंक यू, खुशहाल हो जाए।

0: उसी।
1: ये जनाब इस तरह के लोग कई आपने देखे होंगे, और अक्सर ऐसे लोगों के बारे में हम कमेंट भी पास करते हैं जब वो मौजूद नहीं होते ना, कहते यार छोड़ो उसको यार, बड़ा ही कोई बदमिजाज बंदा है, छोड़ो उसको यार, इखलाक नाम की तो चीज उसके अंदर नहीं है, छोड़ो उसको यार, इतना गुरूर भी होता है किसी के अंदर यार, मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना, इतना तकब्बर है उसको, ये सारे लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अल्फाज कम है। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना किसी के लिए, एक बहुत प्यारी सी हदीस मेरे सामने से कल गुजरी और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में बताऊं, जहन्नम में कौन से लोग होंगे? सहाबा किराम ने कहा जी या रसूलल्लाह जरूर बताइए, कौन से, हमें भी पता चले जहन्नमी कौन होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सख्त मिजाज आदमी, आदमी जिसका मिजाज सख्त है, वो नरमी से बात ही नहीं करता, उसके देखें तो लोग गुस्से से डर जाते हैं, उसके गुस्से से लोग डर जाते हैं, ये बहुत सख्त मिजाज आ गया ये बंदा। दूसरा वो जिसमें इखलाक नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये बंदा। और तीसरा जो तकब्बुर करता है, ये तीनों जहन्नमी है। इससे बड़ी और कोई बात हो सकती है? ये जहन्नमी लोगों की निशानियां है जनाब, बद मिजाज होना, बद इखलाक होना और तकब्बर से भरा हुआ होना। जहन्नम भरी हुई होगी इन लोगों से। जहन्नम में जब आप जाएंगे तो आप इन लोगों को याद रखिएगा जो इस दुनिया में आपको बद मिजाज नजर आते हैं, बद इखलाक नजर आते हैं, जिनके अंदर कोई इखलाक नहीं है, जिनका मिजाज सख्त है और जो तकब्बर करते हैं, गुरूर करते हैं, जहन्नम भरी हुई होगी इन लोगों से। हम कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते हो जहन्नम में जाओगे, यार नमाज पढ़ा करो। कुरान नहीं पढ़ते हो कुरान पढ़ा करो, यार जहन्नम में जाओगे। ये कभी नहीं कहते यार खुद को ठीक कर लो, यार मिजाज ठीक कर लो, जहन्नम में जाओगे। यार थोड़ा सी इखलाक से बात किया करो, नहीं तो जहन्नम में जाओगे। तो यार तकब्बर छोड़ दो यार, मरना एक दिन, जहन्नम में जाओगे भाई। इन लोगों को अब याद दिलाया करें। हम अक्सर बेचारे बेनमाजी बंदे को कहते हैं नमाज पढ़ो जहन्नम में जाओगे, है जरा नमाजी बेनमाजी बंदे के पीछे पड़े होते हैं और कभी किसी को कुछ भी नहीं कहते। और यार ये लोग भी जहन्नम में जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये बेचारा नमाज नहीं पढ़ेगा। ठीक है जनाब, वो तो अल्लाह के हकूक है और उसमें अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है। ये सारे जितनी बातें हैं, तकब्बुर करना लोगों के साथ करोगे ना, किसके साथ करोगे? अल्लाह के साथ तो नहीं कर सकते। बदमिजाजी किसके साथ करोगे? इंसानों के साथ करोगे। बद इखलाकी किसके साथ करोगे? इंसानों के साथ करोगे। तो इसका मतलब तो ये है यार, ये सारे हकूक वाली बात है, इसमें अल्लाह का तो कोई हकूक नहीं है कि जिसकी वजह से आप जहन्नम में जा रहे हैं, लोगों की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। आज की मैसेज को याद रखिए कि, और सिर्फ ये जहन में मत डालिए कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो जहन्नम में जाएगा, ये तीनों लोग भी जहन्नम में जाएंगे।

कहा मेरी तो चाय खत्म हो गई, अब आप लोग पता नहीं चाय पी रहे हैं या आपने पी ली है या बाद में पी ली, यानी केसन के टी टाइम में आप लोगों को ढेर सारा वेलकम जनाब। मुझे कहते हैं खलील ताबे शमान और हमारा नंबर नोट कर लें जनाब, जिन लोगों को अभी भी शिकायत है कि खलील भाई बहुत जल्दी जल्दी से नंबर बताते हैं और हम नंबर सेव ही नहीं कर पाते, तो मोबाइल अपने हाथ में उठा लीजिए या फिर कागज पड़ा है साथ में या फिर पेन पड़ा हुआ है, पेंसिल पड़ी हुई है, कागज पड़ा हुआ तो उसके ऊपर लिखिएगा जी। बिस्मिल्लाह कीजिए 0344 0344 यानी 0344 936 यानी 936, उसके बाद 3366 यानी 3366 आसान है। 0344 936 3366 आखिर के ऊपर बड़े दो लफ्ज हैं, 3366 याद रखे करें, 33 को डबल करें तो 66 होता है, तो 3366 चार तो पीछे आगे पीछे वाले चार लफ्ज तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। 3366 936 को याद रखना है, जैसे एंड के ऊपर 6 है तो यहाँ पर 36 है, 6 ये गोल्डन नंबर है भाई, किसी ने गिफ्ट किया था मुझे। 0344936336 अब उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा हमारा नंबर। जितना मैं बात कर रहा था कि जनाब अस्सू का महीना स्टार्ट है, फिर उसके बाद अच्छे से मौसम, और इस मौसम के बाद आप लोगों को पसीना आना कम होगा और स्किन खराब हमेशा ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से होती है, जब आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, बहुत ज्यादा जो है क्या होता है कि जना पसीना आता है, तो वो दिन खत्म होने वाले हैं, क्रीमों के दिन आने वाले हैं, और केसन आप लोगों को इतने जबरदस्त किस्म के फार्मूले देने जा रही है ना, आप केसन के अलावा क्रीम के बारे में जब भी सोचेंगे ना किसी और क्रीम का सोचेंगे नहीं। आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, जो तीन फार्मूले हमारे बन रहे हैं इस वक्त जो आप लोगों को हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ऑलरेडी हमारी जो है दो क्रीमें मौजूद है, एक ग्लूटावाइड क्रीम है जिससे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, दूसरी हमारी जाफरानी क्रीम है, केसन नाइट क्रीम जिसको कहते हैं उससे भी आप सेटिस्फाइड है, तो आप लोगों को और सेटिस्फाइड करने लगे हम आपको थोड़ा सा हम अपने फार्मूलों को प्रीमियम करने लगे हैं। प्रीमियम क्या कहते हैं, चीज को और अच्छा कर देना, थोड़ा सा महंगा कर देना। प्रीमियम चीज जो भी होगी ना वो महंगी होगी लेकिन वो चीज बड़ी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो हम दो प्रीमियम फार्मूले आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है जनाब। कीमत उनकी 750 से 700 रुपए की एक क्रीम होगी, ठीक है जनाब, लेकिन वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की फार्मुलेशन है जो कि टेस्टेड है। पहले हमने बहुत ही खराब किस्म के चेहरों के ऊपर उनको ट्राई किया है, देन जब सेटिस्फाइड हुए तो हम आप लोगों को वो चीजें देने जा रहे हैं। एक हमारा है केसन स्किन क्लियर फार्मूला, ठीक है जनाब। ये फार्मूले के नाम जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में वही फार्मूले आते होंगे जो दुकानों के ऊपर दुकानदार हजरात बनाते हैं, नहीं भाई, वो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं और वो क्या करते हैं, वो बाजार में बिकने वाली जो क्रीमें होती हैं, जो स्टीराइड हैं, जैसे बेटनोविट है, जैसे कि लाजमा है, जैसे कि हाइड्रोकोनिन है, हाइड्रोकोनिन प्लस है, या क्लोबिवेट है, ये दुकानों के ऊपर जो फार्मूला बनाते हैं ना इनको कुछ नहीं पता होता, मैट्रिक पास लोग होते हैं यार, इनको क्या पता चेहरे के लिए क्या चीज अच्छी है क्या चीज बेहतर है, और ये खवातीन भाग भाग कर जो है ये फार्मूले हजार हजार रुपए का फार्मूला खरीद रही होती है, उनको क्या पता, वो कोई पढ़े लिखे मैट्रिक पास लोग, कोई तो मैट्रिक भी नहीं किया होता और चमची चला रहे होते हैं डब्बी के अंदर, फार्मूला बन रहा है जी, मोहसिन का फार्मूला, जावेद का फार्मूला, है जी कासिम का फार्मूला, किस्म किस्म के फार्मूले बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं आपकी स्किन का, स्टीराइड डाल के दे रहे हैं जनाब आपको, क्लोबिविट डाल के दे रहे हैं, लाजमा डाल के दे रहे हैं, ये सारे स्टीराइड है।

0: ये वो दवाएं हैं जिनको सिर्फ डॉक्टर लिख सकता है और डॉक्टर भी 15 से 20 दिन के लिए लिख सकता है, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता, क्योंकि ये स्किन को खत्म कर देती है। आपने देखा होगा ये फार्मूले लगा लगा के बेचारी लड़कियां जब शादी के काबिल होती हैं तो उनकी चेहरे के ऊपर मेकअप ही नहीं ठहरता, इतनी पतली स्किन कर बैठती है इन्हीं फार्मूलों की वजह से। ओ भाई जान छोड़ाओ, जान बचाओ इन लोगों से, ये दुश्मन है आपकी स्किन के, आप खुद ना होश के नाखन ने। ये दुकान पे ठहरा हुआ मैट्रिक पास बंदा आपको क्या फार्मूला बनाकर देगा यार, आपकी स्किन के साथ खेलेगा। और आप भी खुश हो जाते हैं जनाब, आपको थोड़ी सी व्हाइटनिंग आ जाए, थोड़ी सी स्किन ठीक हो जाए, थोड़ी सी छाइयां खत्म हो जाए, तबाही है भाई आपके चेहरे की। ये जो दुकानों के ऊपर आपको बने बने फार्मूले मिल रहे हैं, क्या होता है आप पूछें तो सही कभी इनसे जाके, भाई क्या डाल रहे हैं उसके अंदर कुछ बताओ तो सही मुझे। हम बताते हैं हम आपको कि केसन आपको कैसे फार्मूले बनाकर देगी। हम जो आपको इस वक्त देने जा रहे हैं जनाब, केसन स्किन क्लियर फार्मूला, बिल्कुल सेफ फार्मूला। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि हम आपको 4 सीरम्स का फार्मूला प्रोवाइड कर रहे हैं। केसन स्किन क्लियर फार्मूला इन्फ्यूज्ड सीरम फार्मूला, 4 किस्म के क्या कहते हैं सीरम, बहुत ही लेटेस्ट एडवांस फार्मुलेशंस है, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जैसे ये प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आएंगे तो आप आपको बताएंगे। एक स्किन क्लियर फार्मूला जो कि सीरम्स की मदद से बना हुआ हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है जनाब, उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत खराब हो चुकी है, छाइयां खत्म नहीं हो रही, दाग धब्बे जिद्दी दाग धब्बे आ गए, उन लोगों के लिए ये हमारा केसन स्किन क्लियर फार्मूला, ठीक है जनाब। दूसरा हमारा ऑलरेडी हमारा जाफरानी फार्मूला मौजूद है, लेकिन इस दफा हम आप लोगों को प्रीमियम क्वालिटी का जाफरानी फार्मूला देने जा रहे हैं। और उसके अंदर आपको जाफरान मिक्स नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी क्रीम के अंदर जाफरानी जाफरान मिक्स होगा, मिक्स शुदा होगा, बस आपने उसको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये भी प्रीमियम है, सो इसकी कीमत भी 700-750 के दरमियान होगी, ठीक है जनाब। तो 2 फार्मूले हम आपको फ्यूचर में अभी आने वाले दिनों में प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जबकि क्रीमों के दिन आने वाले हैं लगाने वाले, तो एक स्किन क्लियर फार्मूला और दूसरा जाफरानी फार्मूला। तीसरी क्रीम हमारी डे टाइम के लिए आ रही है, ये जो इस वक्त हमारी ग्लूटावाइट क्रीम आप लोगों के पास मौजूद है, इसको हमने अभी नए बैच के अंदर चेंज कर लिया है, जो पुरानी पड़ी है जहां पर वो डे एंड नाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो फार्मूला डे एंड नाइट का बना हुआ है। लेकिन इस महीने के एंड से या अगले महीने से ग्लूटा आपको जो क्रीम मिलेगी वो सिर्फ नाइट क्रीम होगी, ठीक है। उसका रिजल्ट और भी पहले से ज्यादा फास्ट होंगे क्योंकि वो दिन को लगाने के लिए नहीं होगा, दिन के जो क्रीम बनाते हैं ना वो फास्ट फार्मूला नहीं बना सकते क्योंकि उसके अंदर आपने दिन के वक्त काम करना होता है। तो अगले महीने से या जो नई हमारी क्रीम आएगी ग्लूटा की वो सिर्फ नाइट के लिए होगी, वो दिन के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो वो फार्मुलेशन भी बहुत अप टू डेट अप टू द मार्क आप लोगों को देने वाले। और चौथी क्रीम जो है ये हमारी आ रही है डे टाइम ग्लो, ठीक है जनाब, केसन की डे टाइम ग्लो जो कि सिर्फ दिन को लगाने वाली क्रीम होगी। ये फेयरनेस क्रीम होगी, जैसे कि हम चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो चेहरा बिल्कुल जी आपका साफ शफाफ हो जाएगा, दाग धब्बे आपके छूट जाएंगे और आपको एक जबरदस्त किस्म का ग्लो भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप दिन के वक्त क्रीम नहीं लगाते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हल्के ये सारे कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन ये हम जो क्रीम आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो कि डे टाइम ग्लो है, डे टाइम ग्लो जो है बेसिकली हमारी क्रीम फेयरनेस क्रीम होगी, लेकिन ये नियासिनमाइड से बनी हुई है, ठीक है ना, विटामिन ई और नियासिनमाइड से। यानी कि जो भी बंदा इसको रेगुलर इस्तेमाल करेगा, बहुत रेगुलर, ठीक है ना, पूरा पूरा महीना हर, क्योंकि फेयरनेस क्रीम तो बंदा हर रोज लगाता है, तो इसके भी इफेक्ट है अपने और ये अभी आपकी स्किन के ऊपर व्हाइटनिंग लेके आएगी। तो केसन जिस तरह आप लोगों को आउटस्टैंडिंग रेंजेस प्रोवाइड करती है, जैसे कि 5 किस्म के फेस व�श हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 7 किस्म के साबुन, जो कल मैंने आपको बताया था भाई 7 के 7 साबुन केसन की जो है वो अब आपको हर जगह मिल रहे होंगे, आज से हर जगह सप्लाई हो गई है। तो जो लोग एक अरसे से कोजिक एसिड ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था कोजिक एसिड, वो बहने जिनको बहुत पुरानी छाइयां हैं भाई, इस साबुन को ले आए आप आज ही घर में ले आए, ठीक है जनाब, आज ही ले आए और इसका इस्तेमाल शुरू करें, केसन कोजिक एसिड। अगर आपको नाम याद नहीं रहते तो मैं आपको थोड़े से कलर बता देता हूं, 7 कलर 7 साबुन 7 रंग के हैं, ठीक है जनाब। अगर आपको याद नहीं रहते तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा दानों वाला साबुन है ना वो सब्ज रंग का है, केसन का जो पिंपल के लिए साबुन है दानों के लिए वो सब्ज रंग का है, जो जाफरानी साबुन है वो जाफरान के रंग का है, मैरून कलेजी का कलर जिस तरह होता है ना कलेजी का कलर, जो जाफरानी साबन है वो कलेजी के कलर का है, जाफरान कलेजी कलर का होता है ना, बिल्कुल। तो जाफरानी साबन का कलेजी कलर का रंग है, जो पिंपल वाला है वो सब्ज रंग का है, जो मिल्की है गोट मिल्क वो दूध के रंग का है, जैसे दूध होता है, ठीक है जनाब। जो उपटन है वो पीले रंग का है, जिस तरह उपटन पीला होता है बिल्कुल उसी तरीके से पीले रंग का है। अब उसके बाद कोजिक एसिड, ये चुकंदर के रंग का है, चुकंदर का रंग पिंक भी होता है, थोड़ा सा डार्क पिंक होता है, वो भी जो है मैरून कलर का होता है तकरीबन, तो जो है उसका रंग पिंक हमने रखा हुआ है। जो छाइयों को खत्म करने वाला साबन है ना, उसका रंग है पिंक कलर का। जो ग्लूटा का साबन है वो थोड़ा सा व्हाइट क्रिस्टल वाटर है, क्रिस्टल टाइप है, यानी कि मिल्की बिल्कुल दूध की तरह है, और जो ग्लूटा का साबन है वो भी व्हाइट है लेकिन वो थोड़ा सा क्रिस्टल व्हाइट है, और ये बिल्कुल दूध की तरह व्हाइट है। और जो राइस शाइन है वो तो आउटस्टैंडिंग कलर है उसका, चावल के कलर का है, यानी कि चावल से बना हुआ है, तो उसका सारा रंग ही चावल, जैसे चावल का रंग होता है ना वही रंग हमारे साबन का है। सारे साबन की पैकेजिंग हमारी चेंज हो गई है, ये मैं आपको बता दूं। इस वक्त हमने आप लोगों को जो साबन दिए, 7 किस्म के साबन जो है वो क्राफ्ट की पैकिंग में आ चुके हैं। ये क्राफ्ट पैकिंग क्या होती है, ये किसी और कंपनी की नहीं है मार्केट में, केसन कभी किसी को फॉलो नहीं करती, हम ट्रेंड बनाते हैं, वो चीजें बनाते हैं कि लोग हमें फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, कोई बड़ाई वाली बात नहीं करते, हमारी मेहनत है और अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला नवाज रहे हमें। तो ये जो पैकिंग है, ये जो बाहर के मुल्क के साबन होते हैं ना, और वहां पर जो नेचुरल साबन होते हैं वो क्राफ्ट की पैकिंग में होते हैं। ये खास किस्म का कार्ड होता है जो यूज होता है, ये आम कार्ड से महंगा होता है, ये होता बिल्कुल एक कलर का है, खाकी कलर का होता है, लेकिन ये जो नीले पीले सब्स किस्म के जो डब्बियां होते हैं ना, उससे ये महंगी डब्बी होती है। कोई ये ना सोचे कि भाई केसन वालों ने पैसे बचा लिए और जो है ना वो सारे के सारे वो खाकी डब्बे के अंदर डाल लिए, नहीं ऐसी बात नहीं। ये हम अपनी लुक दिखा रहे हैं कि नेचुरल साबुन की जिस तरह उसकी बनावट मुख्तलिफ होती है, उसकी पैकेजिंग भी उसी तरीके से मुख्तलिफ होती है। तो ये क्राफ्ट के 7 किस्म के साबन आ चुके हैं जनाब, जिसकी छाइयां हैं तो वो कोजिक एसिड खरीद ले, ठीक है जनाब। जो जो नई नवेली दुल्हन बनने जा रही है तो वो उपटन का साबन ले ले, ठीक है जनाब। इसी तरीके से हमारा जाफरानी साबन है, इसी तरीके से गो पिंपल साबन है, मिल्की साबन है, और सांवले लोगों को गोरा बनाने के लिए हमारा ग्लूटा व्हाइट साबन है। जनाब ये साबन आप लोगों के पास है, और क्रीमें कुछ हमारी आने वाली हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूद क्रीमें हैं फेस के लिए वो हमारी जाफरानी केसर नाइट क्रीम, जाफरानी फॉर्मूला क्रीम मौजूद है, 320 रुपए इसकी कीमत है। इसके अलावा ग्लूटा व्हाइट इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है, 350 रुपए इसकी कीमत है। ये दोनों क्रीमें आप इस्तेमाल करेंगे, आपके दाग धब्बे खत्म होंगे, कील मासे खत्म होंगे, छाइयां खत्म होंगी, आपकी रंगत जो है क्लियर हो जाएगी, स्किन आपकी क्लियर हो जाएगी, और आपके चेहरे के ऊपर जो टू टोन जो है, या कहीं पर ब्राउन धब्बे हैं, कहीं काले धब्बे हैं, चेहरा आपका एक रंग में नहीं है, तो हम गारंटी देते हैं कि ये दोनों क्रीमें, केसन ग्लूटा व्हाइट डे एंड नाइट क्रीम और केसन जाफरानी क्रीम, इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तमाम तर समस्याएं, अब आपके तमाम तर मसाइल हल होंगे। इनके साथ साथ हमारे आप साबन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जाफरानी क्रीम के साथ जाफरानी आप साबुन खरीदिएगा, ग्लूटा व्हाइट क्रीम के साथ ग्लूटा व्हाइट का साबुन खरीदिएगा, या फेस वॉश। टांक डेर इस्माइल खान में मुझे लोग सुन रहे हैं, डेर इस्माइल खान में हर जगह पर आपको केसन के प्रोडक्ट मिलते हैं। स्टेट लाइफ बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है जनाब गुलशन कैश एंड कैरी, ठीक है जनाब। गुलशन कैश एंड कैरी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो स्टेट लाइफ बिल्डिंग के सामने जाएंगे तो जनाब वहां पर है, आप वहां पर हमारी ये क्रीम और साबुन और सारी चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है जफराबाद में हाजी जरी जनरल स्टोर है, वहां पर आप हमारी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, बाजार के अंदर सारे बाजारों में आपको मिलते हैं। टांग की बात करें तो मंसूर जनरल स्टोर रमजान मार्केट के अंदर शॉप नंबर 3-4 है, वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा वहीद जनरल स्टोर है अल बदर मार्केट टांग में, पता करें कि ये कहां पर है, उसके बिल्कुल सामने है वहीद जनरल स्टोर, आप उसे पता करें केसन के प्रोडक्ट का। उसके बाद मदीना जनरल स्टोर है सदर प्लाजा के बेसमेंट में, सदर प्लाजा जो है उसका जो तहखाना है वहां पर है मदीना जनरल स्टोर, वहां पर मिलेंगे। उसके बाद फहीम जनरल स्टोर है अल बदर मार्केट के अंदर टांग के अंदर जो है, और गुलाम जान जनरल स्टोर ट्रैफिक चौकी जो है वहां पर भी हमारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, और मंसूर जनरल स्टोर दुकानदार हजरात भी वहां से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर 0344-936-3366, ठीक है ना, 0344-936-3366। मैंने आपको बहुत इजीली भी बताया हुआ है, 0344-936-3366। जी जनाब, इन नंबर पर आप रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह पहाड़पुर के एफएम का मसला कल हल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कल से पहाड़पुर के लोग भी हमारी ट्रांसमिशन जो है बयक वक्त डेरा और टांग के साथ सुन पाएंगे। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्यों आ रहे हैं
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मुलाजिम दुकानदार रणवाल को सारे नाल से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रणवाल तमाम मुलाजिम दुकानदार परदेसी शहर मदरसे के नाल मेरी दुकान है, घर भी मिल गए ते दुकान से मिल गए कैसन दे प्रोजेक्ट दे रहे जितने सारे को मिल गए।
0: अच्छा, हूँ सारे तुम्हारे को पहुँच गए, कोई गिला तो कौन हो तो ताकत प्लस दी शॉर्टेज या क्रीम या साबुन दी शॉर्टेज की शायद ही
1: बाजार लगे।

0: कर देता है अपने फार्मूले से। ठीक है जनाब, पहली बात तो ये है कि फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें बालों को धोने के लिए, नहीं है तो आखिरी पानी जब आप सर के ऊपर डालें तो वो फिल्टर का होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर आपके पास शैम्पू केसन का होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है जो कि पानी के जो उसका नुकसानदेह अमल है उसको ये खत्म कर देता है अपने यूनिक फार्मूले की वजह से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल जनाब?
0: जनाब क्या हाल है? अंकल असद हमारे साथ आ चुके हैं, कैसे हैं मोहतरम? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं?
1: आप हमारे छोटे हैं, एक अर्ज आपके सामने करते हैं।
0: जी हुक्म क्या करें, अर्ज ना क्या करें अंकल?
1: नहीं नहीं, फिर भी आप मेहमान है ना हमारे पास।
0: अभी मेहमान हूँ, इतना पांचवा महीना चल रहा है, इतना लंबा मेहमान भी कोई होता है?
1: अर्ज ये है जनाब।
0: जी जी,
1: आप अपनी प्रोडक्ट की जितनी तारीफ करें ना, हक है और हक जानिब है, जितनी तारीफ करे इतनी तारीफ करे कि लोग बगैर आपके प्रोडक्ट दूसरी तरफ किसी का ख्याल भी न जाए।
0: ठीक है,
1: लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की तनकीद या उसी का उस तरफ इशारा करना, ये इसको बिल्कुल छोड़ो। अपनी उसकी जितनी कर सकते हो ना वो करो। आज आपने कुछ इस तरह इशारा दिए ना, तो ये जरा मुनासिब
0: नहीं
1: है।
0: अंकल मेरी बात सुने, एक बंदा है, एक बंदा है, अगर इस तरह होता तो फिर तो हमारा मजहब हमें कहता कि भाई तुम अपने अपने अमाल से काम रखो, किसी और की तरफ ना बोलो कि या इस तरह का काम ना करो, ये गलत काम होता है, इससे जहन्नम में बंदा जाएगा, इससे नुकसान। अब एक चीज है जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है, एक नशा है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। आप मना नहीं करेंगे किसी को कि भाई ये नशा ना इस्तेमाल करो, इस जगह पर मत जाओ, यहाँ पर ये बंदा नशा बेच रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह होगा, आप उसे मना नहीं करेंगे? आप शहद बेच रहे हो? नहीं अंकल बात सुने, आप शहद बेच रहे हो, आपका काम शहद बेचने से है, लेकिन गलत चीज को आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे। आप अगर कोई शराब बेच रहा हो आप उसे मना नहीं करेंगे बेचने से?
1: अच्छा माजरत चाहते हो, माजरत।
0: नहीं देखिए, मैं आपको कहने का मकसद ये है, आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें, मैं मेडिकल की फील्ड से आया हूँ, आम लोगों को, आम आरजे को इस चीज का पता नहीं होता कि ये इन फार्मूलों के अंदर क्या चीज डल रही है। हम इन चीजों को, मैं 15 साल पूरे मेडिकल में गुजार के आया हूँ, मुझे पता है। आपको, एक आम बंदे को नहीं पता क्लोबिविट क्या होती है, आम बंदे को नहीं पता लाजमा क्या होती है, आम बंदे को नहीं पता बेटनोविट क्या होती है, आम बंदे को पता नहीं कि हाइड्रोक्विनिन प्लस क्या होती है, आम बंदे को पता नहीं जेंटामाइसिन क्या होती है। लेकिन ये जो आपको दुकानदार फार्मूले बनाकर दे रहे हैं, ये भाई आपका नुकसान है, नशा बेच रहे हैं। मैं तो क्लियर बोलूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है इस चीज का। हो इतने बेचारी लड़कियां जिनके जिंदगियां खराब हो रही हैं, अब इनको पता नहीं, इनको कौन नॉलेज प्रोवाइड करेगा, कौन बताएगा इनको कि भाई इसके अंदर तो जहरीली चीजें हैं, इसके अंदर ये 3 दिन के अंदर रिजल्ट कैसे आता है मुझे बताएं आप? कोई भी व्हाइटनिंग वाली चीज 10 दिन से पहले जो सही बनी होगी वो आपको 10 दिन से पहले रिजल्ट नहीं दे सकती, जब तक उसके अंदर केमिकल नहीं होंगे, मुजर केमिकल। तो मैं आपको जो बात बात बात कर रहा था स्टार्ट के अंदर, भाई वो मासूम लड़कियों को नॉलेज देना है, उनको बताना है कि भाई ये क्या डाल रहे हैं चीजों के अंदर। अब एक बंदा नुक्कड़ के ऊपर बैठ के ऊपर नशा बेच रहा हो और आप नमाजी हो और आपको पता भी हो कि नशा नुकसानदेह, तो आप उसको मना नहीं करेंगे? या आप कहेंगे यार मैं बस नमाज पढ़ता हूँ, मेरा काम नमाज से है। वो क्या कहते हैं, एक दफा इस तरह हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा एक बस्ती को तबाह बर्बाद कर दो, जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको, इस बस्ती को निस्तो नबूद कर दो, ये नाफरमान लोग हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह इसमें एक बंदा है, वो जो फलां कोने में बैठा हुआ है, वो तो सुबह शाम आपकी तस्बीह करता है, वो तो सजदे से सर नहीं उठाता। अल्लाह ताला ने कहा सबसे पहले इसी को तबाह करना, सबसे पहले इसी के ऊपर अजाब मुसल्लत हो, जब बस्ती को तोड़ना तो सबसे पहले यही बंदा रगड़ा जाए। क्यों नहीं देता दूसरों को दावत? क्यों इसने दूसरों को गुनाह से मना नहीं किया? क्यों ये खुद तो नमाज पढ़ रहा है, खुद तो तस्बीह पढ़ रहा है, दूसरों को क्यों नहीं मना कर रहा, दूसरों को क्यों नहीं बता रहा कि ये अमाल करके जहन्नम में जाओगे? तो आपका खुद का नमाज पढ़ना काफी नहीं है, और ना ही आपकी अपने नमाज पढ़ने में निजात है। ये तो सबसे पहले पूछा जाएगा, आप जहन्नम में जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, वो जहन्नम में जाए, आप जन्नत में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा यार आपका पड़ोसी जहन्नम में गया क्यों है? जब आपको पता था ये चीजें इतनी अच्छी हैं, आप जन्नत में आ गए हो, तो उस बेचारे को दावत क्यों नहीं दी? तो अंकल असद, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कि यहां पर आपका जो पॉइंट है वो गलत है, वो ठीक नहीं। अगर देखिए, मैंने आज तक किसी कंपनी का नाम नहीं उठाया, किसी को कुछ नहीं कहा, उन लोगों का जिक्र किया है जो लोगों के चेहरों के साथ खेल रहे हैं। आप किसी नौजवान बच्चे को नशे के ऊपर लगा लो, आप नमाजी हो, आप वहां से गुजरो, आप कहोगे मैं तो अपनी नमाज पढ़ूंगा, मैं तो नेक बंदा हूं, मैं क्यों मना करूंगा, भाई पहले आपसे पूछा जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, नॉलेज एक चीज का मुझे पता है, मेरा रब कल मुझसे नहीं पूछेगा कि खलील मियां तुम्हें तो पता था कि ये चीजें कैसे बन रही हैं, फिर लोगों को क्यों नहीं बताया। ये चीजें आप किसी डॉक्टर से जाके पूछे, वो भी अब ये जो चीजें है ना, ये डॉक्टरों के लिखने की है, ये बैठने की, ठीक है जनाब। ये अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे ना, सोच रहे होते हैं कि यार अगर ये चीजें इतनी खतरनाक है तो कंपनियों ने बनाई क्यों है और फिर ये मार्केट में आई क्यों है। तो इसका जवाब ये है, ये चीजें बिल्कुल कंपनियों ने बनाई हैं, ये डॉक्टरों के लिखने की हैं और डॉक्टरों को पता होता है कि ये चीज किसी भी मरीज को कितने अरसे के लिए लिखनी है, और ये फार्मूलों के अंदर डालकर आपको पूरा पूरा साल लगवाते हैं। आप किसी भी बहन से पता करें ना जो फार्मूला बनवाती है, वो जब से जवान हुई होगी वो साल के 364 दिन वही फार्मूला लगा रही होगी। क्यों लगा रही होगी? क्योंकि छोड़ती है तो फिर स्किन खराब होती है, ठीक है जनाब। तो ये डॉक्टरों के लिखने की चीजें हैं और ये खास टाइम के लिए होते हैं, ये मैक्सिमम आप एक महीने तक लगा सकते हैं ये क्रीमें जो मैंने आपको बताई हैं। आमतौर पर पूरा साल नहीं लगाई जा सकती, स्किन पतली हो जाती है, रगे नजर आना शुरू हो जाती है स्किन में से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अकीजन भाई चले गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जहां पर आपको अगर आपके पास इल्म है तो उसे जरूर बांटें, जरूर लोगों को बताएं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ चीजें वाइटनिंग के लिए, ये नहीं होता कि सारी चीजें सारी क्रीमें आपकी स्किन को खराब करती हैं। ये बहुत लंबा लेक्चर है, मेरे पास 3 घंटे हो ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई क्रीमें, सारी क्रीमें खराब नहीं होती हैं, ठीक है जनाब। वो क्रीमें जिनके अंदर केमिकल होते हैं, मुजर केमिकल, वही आपकी स्किन को खराब करती है। जो पढ़ी लिखी कंपनी होगी वो कभी अनऑथेंटिक, मैं अल्लाह को जान देनी है, ये एआई का दौर अभी शुरू हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर अभी शुरू हुआ है, और अभी आप इनसे जाके पूछे ना कि भाई स्किन के लिए कौन से इंग्रेडिएंट को शामिल करना चाहिए जो स्किन को गोरा करें, जो स्किन के रंग, तो वो आपको बोलेगा अल्फा आरबुटीन, नियासिनमाइड, विटामिन सी, लिकोराइस, कोजिक एसिड, ये 5 चीजें आपको गुनाएगा। अल्लाह को जान देनी है, हमने जब से कंपनी लॉन्च की है, जब से क्रीमें बनी है, यही चीजें हमारी क्रीमों में इस्तेमाल हो रही हैं, यही 5 चीजों से हमारी क्रीम बन रही है जो कि एथिकल है। ये भी व्हाइटनिंग देते हैं लेकिन ये एथिकल है, इनकी इजाजत है, इन चीजों से क्रीमें बनाकर देने की इजाजत है। कौन कौन सी चीजें? नियासिनमाइड, ये आपकी स्किन को गोरा करता है, ये कोई स्किन को खराब नहीं करता, वक्त लेता है लेकिन आपकी स्किन को गोरा कर देता है, कोई नुकसान नहीं देता। कोजिक एसिड आपकी छाइयों को खत्म करता है, एक नेचुरल वे है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। अल्फा आरबुटिन बियरबेरी से एक्सट्रैक्ट से हासिल किया जाता है, स्किन को व्हाइट करता है, आपके दाग धब्बे खत्म करता है। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट आपकी स्किन को व्हाइट करता है। तो ये 4-5 चीजें हैं सामिन किराम जो कि जायज हैं क्रीमों के अंदर, और इनसे बनी हुई क्रीमें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी, ठीक है जनाब। आपकी स्किन कभी भी पतली नहीं होगी। 4 साल हो गए हमारी क्रीम को आए हुए, नाइट क्रीम को, डेरस मिलखान के लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या कोई एक बहन है जो कॉल करके बोले कि भी मेरी स्किन इस क्रीम ने पतली की है, मैंने केसन नाइट क्रीम इस्तेमाल की है तो मेरी स्किन में से रगे नजर आना शुरू हो गई? कोई एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हम ये जो एथिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, एथिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो मैंने आपको काउंट करवाए हैं, विटामिन B3, नियासिनमाइड, कोजिक एसिड, अल्फा आरबुटीन, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, ठीक है जनाब, ये 4-5 जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये जायज इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपकी स्किन को व्हाइटनिंग देते हैं, जो आपकी स्किन की क्लैरिटी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है जनाब। और ये जो रातों रात गोरे लोग होते हैं तो उनके अंदर केमिकल होते हैं और वो नुकसानदेह, एक नुकसानदेह चीज की आप क्यों किसी को नाम बताएं, मुझे बताइए ना। मैंने नाम किसी का नहीं उठाया लेकिन उन चीजों का नाम उठाया है जिनसे भाई यकीन करें हमारे पास लड़कियां आती हैं केसन शॉप के ऊपर, अंकल असद यकीन करें वो पर्दा हटाकर दिखाती है, उनके गालों के ऊपर से रगे नजर आ रही होती है, इतनी स्किन उनकी पतली हो चुकी होती है। अब उसको ठीक करते हुए टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन के अंदर स्किन कैसे रिपेयर होगी? सेल टर्नओवर ये बहुत टाइम लेता है, जब किसी की स्किन बिगड़ जाए ना, स्किन पतली हो जाए, फिर से स्किन को रिजुविनेट करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। अब ये जो हमारी स्किन के लेयर फार्मूला आ रहा है उसके अंदर रेटिनॉल है, रेटिनॉल सीरम है जो कि सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा और स्किन को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। तो केसर नेचुरल पाकिस्तान भाई आप लोगों के सामने खुली किताब है, और खुली किताब का मतलब ये है कि आप हर चीज हम आपको बताते हैं, और जो चीजें एथिकल होंगी आपको हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर मिलेंगी। केसर नाइट क्रीम को उठा लें, ग्लूटावाइट क्रीम को उठा लें, हमारी हैंडेड फुट क्रीम को उठा लें, हमारी कोई भी क्रीम उठा के देख लें, एथिकल जो अज्जा है वही आपको हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, मुनीर बोले लखकलां दरिया खान।
0: जी लखकलां दरिया खान बोल सही।
2: जी दरिया खान के तले लखकलां।
0: अच्छा मुनीर भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? वैसे ही चंगे सुन रहे हैं आप लोग?
2: जी प्रोग्राम ही सुन रहे हैं। तो तेल नहीं आ रहा।
0: कौन सा? शिफाए दर्द।
2: जी शिफाए दर्द।
0: चक्कर डेरा नहीं लग रहा भाई? आप मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, आप जब भी कॉल करते हैं आपको तेल चाहिए भी होता है और हमारा वहाँ पर तरीकाकार नहीं बन रहा, मसरूफियत असल में एरियाज हमने बहुत सारे ओपन किए हुए हैं ना। तो आप दरिया खान डेरा का कितना फासला है मुझे बताइए?
2: 40 किलोमीटर है।
0: 35-40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर आपने ज्यादा बता दिया, मेरा कम है
2: तकरीबन इतना हूँ। अगर सीधा जाए तो 14 किलोमीटर बन रहता, अगर रोड पे जाए तो 40 बन जाता है।
0: हाँ बहरहाल मैंने आपसे लास्ट टाइम भी वादा किया था लेकिन पूरा नहीं हो सका। तो आप
2: आप ऐसा करें ना, हमारा खीर वाला ज्यादा है डेरा इस्माइल खान ना,
0: ठीक है?
2: कोई ऐसी दुकान बताएं जहाँ वो सुगले के नजदीक नजदीक हो।
0: हमारे मोहल्ले का जो दूध वाला है ना वो भी दरिया खान का है, वो अभी मुझे याद आया। काशिफ नाम है, काशिफ उसका नाम है, मलिक मलिक हम उसको कहते हैं, काशिफ। वो भी आपके दरिया खान का है, पता नहीं वो घर कब जाता है, मैं उससे पता कर लूंगा फिर आपसे रब्ता कर।
2: नहीं हमारा दूध वाला आता है ना, वो हक नवाज है उसका नाम।
0: अच्छा जी, कहाँ पर? डेली आता है?
2: जी और डेली जाता है वो मकबूल दूध वाले नहीं आए, उनको दूध देता है जो चुगले के साथ साथ होता है।
0: मकबूल हलवे वाले?
2: जी
0: वो जो घास मंडी के पास दुकान है।
2: जी जी।
0: अच्छा तो अगर उधर हम रखवा दें तो फिर आप ले उठा लेंगे वहाँ से?
2: हाँ कोई अगर उस नहीं बैठा हाजी रियाज तेल वाला, अगर उसके पास रखा दें तो मैं उसको कहूँगा वो चाहिए आएगा।
0: ठीक है। अच्छा क्या आपको फायदा क्या मिले लोगों को बताएं? टांक वाले सुन रहे हैं आप, पिछले 2-3 माह से मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि शिफाए दर्द दें, शिफाए दर्द। क्या फायदा मिला आपको इससे बताएं थोड़ा सा लोगों को?
2: शिफाए दर्द का बहुत फायदा मिला, मेरे जो है ना घर वाली उसका है मोरों का मसला है। जी पहले रोज हर डॉक्टर के पास जाते थे, कभी 5 दिन कभी 7 दिन दवाई खाती थी, तकरीबन 2-3 महीने हो गए वो जब से इस्तेमाल किया तो दवाई कम खा रहे हैं।
0: अच्छा दवाई की मिकदार कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म भी हो जाती है इससे? ठीक है ना?
2: नहीं खत्म तो फिलहाल नहीं हुई थी लेकिन कम हो गई है।
0: कम हो गए बिल्कुल। आप अभी आपको 2 महीने से तो मिल भी नहीं रहा ना हमारा तेल, पहली बात तो ये कि आपने 1 महीना इस्तेमाल किया था। तो अभी इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे कल, कितने 2 बोतलें भिजवानी है उधर?
2: हाँ 2 भिजवा दे 2।
0: हाजी रियाज के पास वो जो घास मंडी के आसपास है, ठीक है?
2: हाँ घास मंडी के साथ जो खाल वाला है ना तेल वाला
0: खाल रियाज, हाजी रियाज, ठीक है जी। ठीक हो गया जी, उधर ही हम रखवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत
2: शुक्रिया।
0: पैसे उधर दीती आसी, बिल्कुल हाजी रियाज को पैसे दीती जाएगा, ठीक है जनाब? जितने पैसे बन गए
2: कुछ उर्दू तो कोई सराकी तो कोई,
0: ठीक है बहुत शुक्रिया जनाब रियाज भाई हमारे साथ मौजूद थे। केसर नेचुरल पाकिस्तान की प्रोडक्ट, ये कहानी है जी केसर की, ये होता है मियाद जब आप किसी को इस तरह की, यानी कि एक बंदी और एक औरत जो मोरों के मसले का शिकार थी उसकी दवाई आधे से भी कम रह गई होगी और पिछले ये बेचारा 2 महीनों से कॉल कर रहा है, हमारी प्रोडक्ट दरिया खान में जा नहीं रही, ठीक है जनाब? और ये कहते हैं कि 3-4 बंदे और भी मांग रहे हैं। तो वजह क्या है कि भाई आपका हजारों रुपए के खर्चे बच सकते हैं अगर आप इस तेल को अपने उस बंदे के लिए मंगवा लें जो बहुत अरसे दराज से जोड़ों के दर्द में, पट्ठों के दर्द में, कमर के दर्द में, इन तमाम दर्दों के अंदर मुब्तला है। तो यकीन कीजिए जिस तरह ये भाई कह रहे थे, जिस तरह उस दिन एक और भाई भी आप लोगों को बता रहे थे कि मैंने इसको इस्तेमाल किया है तो किस तरीके से मुझे इसका फायदा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। के यू आमिर अवान, पहले के यू हया खान हमारे साथ होते थे, امروان پاکستانی کہتے ہیں خلیل برا حال سنا زفرانی صابر نے تا میرا چیتا برکا سٹا ہے اور ہن تا محلے دے بال آدھے ہن ایف ایم والا وہندا پیا ہے او ویلا بھی ضرور آسی جو لوگ آکسن کیسن دا بندہ وہندا پیا ہے ہیں جی اچھا کدر خان کو میرا سر کیسن کا کیجو جب بنیں گے تو بھائی چہرے کے اوپر نکھار تو آئے گا, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ کیسن کے پروڈکٹ استعمال کریں اور آپ کے چہرے کے اوپر نکھار نہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
3: جی میں ایک بہن آپ کے ساتھ بول رہی ہوں کہ میں نے آپریشن کیا ہے نا اور ریٹ کی ہڈی میں مجھے وہ انجیکشن لگایا ہے نا, اسی کی وجہ سے میری کمر میں بہت درد ہوتا ہے اور گھٹنوں میں بھی.
0: بس آپ ٹانگ سے یا ڈیرا سے؟ بس ٹانک سٹی سے. ٹانک میں تو الحمدللہ اتنا زیادہ بک رہا ہے ہمارا یہ آئل, اتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. آپ تھوڑا سا گرم کر کے ٹھیک ہے دن میں آپ کم از کم اس کی جو ہے تین دفعہ مالش کروائیں, تین دفعہ ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ ٹیبلٹس کوئی کھا رہی ہیں تو آپ کی ٹیبلٹس ختم ہو جائیں گی اور آپ کو درد سے بالکل تین سے چار دن کے اندر آپ پھر سے کال کر کے بولیں گے کہ بھائی میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے جی, اس کو تھوڑا سا نیم گرم کر کے اس کے آٹھ دس قطرے ڈالنے آپ نے مطلوبہ جگہ پر جہاں سے جہاں تک آپ کو درد رہتا ہے, اور اتنی دیر تک مالش کریں کہ یہ جذب ہو جائے مکمل طور پر جسم کے اندر. ٹھیک ہے
3: منسوخ.
0: وائٹنگ ہماری ایک زعفرانی کریم موجود ہے اور ایک گلوٹا کی بھی ہے, دونوں جو بھی آپ لگائیں گی کم, اگر ہم کہتے ہیں کہ جو کم عمر کے لوگ ہیں لڑکیاں ہیں جیسے وہ گلوٹا کریم استعمال کریں, اور جو میرڈ ہیں یا جن کی سکن بہت زیادہ خراب ہے بہت زیادہ کریمیں لگا چکے ہیں تو وہ زعفرانی کریم استعمال کریں.
3: کریم میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں لگائی, تو میں اتنے سفید کی اور اب اتنی بالکل سیاہ ہو گئی ہوں.
0: پھر آپ بہن میرے پھر آپ اس طرح کریں, آپ ہمارا ملکی صابن ملتا ہے 200 روپے کا, ٹھیک ہے ملکی صابن ٹھیک ہے, آپ بس اسے استعمال کریں دن میں دو دفعہ اس کو لگائیں اور تین دفعہ شفا درد کو لگائیں, انشاءاللہ دونوں مسئلے حل ہوں گے آپ کے.
3: میرا جسم میرا جو وہ سکن ہے آئلی ہے.
0: آئلی سکن ہے آپ کی؟
3: جی آئلی.
0: بس وہ ہر قسم کی سکن کو سوٹ کرتا ہے, اس کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے,
3: صدر پلازے میں,
0: صدام پلازا رمضان مارکیٹ میں جائیں گے منصور جنرل اسٹور سے آپ پتا کیجیے گا وہاں پر مل جائے گا.
3: صدام پلازا
0: ٹھیک ہے جی, یہ ٹانک اسٹارٹ کے اندر ہی آ جاتا ہے جی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور بالکل درد کے کوئی بھی معاملات ہوں, اور ایک دن ایک بہن آئی تھی ہمارے پاس شاپ پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو وہ ہر ہفتے آ کے ہم سے پروڈکٹ لیتی تھی, ملتان بھجواتی تھی کبھی کسی کو کبھی کسی کو, تو میں نے کہا بہن تھوڑا سا ریویو دے دینا کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا شفا درد. کہتے بھائی جہاں پر بھی درد ہو جسم میں بس اس کو لگاؤ شفا ہے. کہتے میں کیا کیا بتاؤں کتنے بندوں کو میں نے دیا, مختصر یہ کہ جسم میں کہیں بھی درد ہو, گوشت کے کسی بھی حصے کے اوپر درد ہو, ہڈی کے حصے کو درد آ رہا ہو, آپ یہ بالکل اس سے ٹھیک ہو جاتے اس کو لگانے سے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل بھائی بڑے عرصے کے بعد 91 پر کال کر رہا ہوں. 91 میں وجے خان ٹانک, سب دوستوں بہنوں بھائیوں لسنرز کو بہت بہت سلام. آپ کو بہت بہت مس کر رہا ہوں, بہت پیارا آپ کا پروگرام کے اندر موسم بنا ہوا, ادھر بارش ہے جی, ہوا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی.
0: اچھا جی بالکل. کہاں ڈیرا میں آئے ہوئے ہیں؟ ادھر پاڑپور سے.
4: میں اپنے گاؤں گھر میں کھڑا ہوں. آپ کو بہت شدت سے یاد کیے آپ کے لسنر کو, میں بس ہم لکیلی ہمارا تو ایسا ثانوی شہر چار تو خراب ہوا.
0: ہمیں بتایا گیا کہ کل انشاءاللہ آن ایئر ہو جائے گی ٹرانسمیشن وہاں سے.
4: بہت مزہ آئے گا, جائن رکھیں گے ایک دوسرے
0: کو. مس کر رہے ہیں ہمیں, ہمارے شو کو مس کر رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے, ٹرانسمیشن نہیں آ رہی.
4: بے چینی ہے, بہت بے چینی.
0: چلو جی,
4: شکر ہے اس دن میں خود آیا ہوں آپ کی زیارت کی, ملاقات کی ہے آپ نے.
0: خود آئے تھے بالکل,
4: بہت عزت دی, عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ.
0: عزت افزائی آپ نے دی ہے کہ ہم نے دی, ہمارے لیے اتنی بڑی سواد ہے جی. رج رج کی ہم نے پنڈے کھائی ہیں آپ کی کھجور.
4: اللہ جنت کا میوہ ہے, سب کا حق بنتا ہے.
0: بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا.
4: بہت بہت سلام. آپ کی جلدی جو پروڈکٹس آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت گفٹ کرنی ہے, اور یعنی ہم کے ہم نے پرچیز کرنی ہے, آپ نے ہمیں دینی ہے
0: انشاءاللہ جی. انشاءاللہ بس دعا کریں جلدی سے آ جائیں.
4: آخری سیکنڈ رہے آپ کا پروگرام اور آپ کے لسنرز کا ٹائم بہت قیمتی ہے. تھینک یو.
0: نظر حسن ہمارے ساتھ ہے اور اس دن ڈیر اسمل خان آئے ہوئے تھے اور میرے لیے اسپیشل پہاڑ پور کے لوگ جب بھی آتے ہیں بھائی ڈھیر ساری کھجوریں لے کر آتے ہیں جناب اور کیونکہ سوغات ہے نا پہاڑ پور کی. السلام علیکم.

से अब्दुल्ला सर, मेरी बहन है वो बहुत कमजोर है, हवा से उड़ती है, मैं उसके लिए ताकत प्लस ले आया हूँ, अब दुआ करें कि वो हेल्दी हो जाए, वरना उसने धमकी दी है कि अगर मैं मोटी ना हुई ना तो सारे पैसे आप देंगे। और अब तो हमारे घर में हर तरफ केसन ही केसन देखने को मिलता है, जाफरानी क्रीम, सोप और गो पिंपल ब्यूटी स्प्रे और हाजमे वाली सिरप तो ऐसे यूज होती है जैसे आटे में नमक, खाने के बाद सिरप पानी की जगह पिया जाता है। जी जनाब, ये टांग से हमारे भाई हैं अब्दुल्ला और केसन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और मैं अपनी बहन को दोगुना पैसे वापस करूंगा अगर आपने इसे 3 माह तक इस्तेमाल कर लिया। जो हवा के साथ उड़ती हैं लड़कियां, उनको कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल करना है इसको। और अभी मौसम तब्दील हो रहा है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है जब नीम गर्म पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करते हैं, सॉरी नीम गर्म दूध के साथ। दोनों पक्कियों का रिजल्ट गर्म पानी के साथ बहुत जबरदस्त आता है, स्पेशली जो वेट कम पेट कम है ना उसको भी, दोनों वक्त जब आप लें तो नीम गर्म पानी के साथ लें, बहुत जल्दी आपकी चर्बी पिघलेगी। और दूसरा जो ताकत प्लस है, इससे भी आपको भरपूर ताकत मिलेगी अगर आप नीम गर्म दूध के अंदर इसको मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। आगे सर्दी आ रही है तो सर्दी में तो हमेशा रात को जब बंदा दूध पीता है तो ऐसे पीते भी नहीं है ना, तो इंशाल्लाह सर्दियों की ये प्रोडक्ट है ताकत प्लस जो है ना, ये जितना फायदा आपको सर्दी में देगी ना शायद गर्मी में इतना ना दे, बहुत अफादियत बढ़ जाती है इन चीजों की सर्दियों के अंदर। तो ताकत प्लस को इस्तेमाल करने वाले इंशाल्लाह अपने आप को मजबूत ताकतवर होता हुआ देखेंगे जब गर्म दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ। हमारे साथ मंदरा कलां से जो है सारा गुल भी मौजूद है। अच्छा जी, और इसके बाद माशाल्लाह बहुत तो खूब उस्ताद जी आपकी बातों से एग्री करते हैं, ठीक है जनाब। और ये इनको भी बताया कि भाई ये फॉर्मूला वाली क्रीमें कितने स्किन को खराब करती हैं, जो दुकानदार हजरत खुद बना कर देते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे है। ये मेरे मेरे फायदे की बात नहीं है, ये आपके फायदे की बात, ये जो मैंने आपको किया ना बात, जो समझदार होगा उसको समझ आ गई होगी और उसे पता भी होगा कि ये क्रीमें लगा लगा के वो अपनी स्किन को कितना पतला करके बैठे हैं, ठीक है जनाब। एंड कहते हैं कि आपके गोल्ड वर्ड्स के ऊपर हमारा अंधा एतमाद है और जो भी आप हमें बात बताते हैं हमें पता है कि वो हमारी खैर के लिए होती है।

0: जी जनाब, केएसएन नजुल पाकिस्तान का केएसएन टी टाइम जनाब सुन रहे हैं आप ग्लोबल एफएम 91 डेयर इस्माइल खान। डेयर इस्माइल खान में हर जगह हमारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और स्पेशली ताकत प्लस।
1: इट्स 5 o'clock, आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन, जन रंग अमन। You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: हमदर्द की एक दवा आती है किरमार के नाम से,
1: किरमार
0: ठीक है। अब पाउडर होगा सफेद से रंग का दानोदार,
1: ठीक है।
0: अब वो तकरीबन 100 रुपए की बोतल है। वो आपने इसको तकरीबन 12 साल अगर बच्चे की उम्र है तो आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है,
1: ठीक है।
0: हाफ जो है आपने एक रात देना है दूध के साथ,
1: ठीक है।
0: हाफ जो है सेकंड नाइट को दूध के साथ देना है, लेकिन उससे पहले आपने उसे कुछ जलेबी, कोई थोड़ा सा मीठा
1: उसको दे देना,
0: मीठा खिलाना है। उसके बाद आपने नीम गरम दूध जो कि मीठा हो उसके साथ आप वो पाउडर पहले डालेगा फक्की की तरह मुंह में,
1: ठीक हो गया।
0: और बाद में वो दूध पी ले, तो सुबह जिस टाइम वो जाएगा अपने बाथरूम में तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब उसकी स्टूल पास होगा वहीं से साबित हो जाएगा कि इसके पेट में कीड़े हैं।
1: अगर कीड़े ना हो या कीड़े उससे भी हल ना हो उसे मसला, तो आपको क्लिनिक पर
0: फिर वो आपको क्लिनिक पे आना पड़ेगा। बाज दफा ऐसा भी होता है कि कीड़े निकल जाते हैं, बाज दफा कीड़े बड़े, बाजू का तो ऐसे भी मरीज आए हैं जिनके पेट में ये तकरीबन इनकी लंबाई जो है वो 4 से 5 फुट की है,
1: इतनी लंबी
0: बढ़ जाते हैं अंदर और फिर बहुत मुश्किल होती है।
1: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बहन कह रही थी इनका भाई है, बेहतर ये है कि ये अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग में एक मरतबा चक्कर लगा लें, क्योंकि
0: ये बेहतर ही आते हैं। तो जाहिर बात है बच्चे को तफसील से देखा जाएगा, उसका मुआयना करके और फिर उसके लिए जो भी तजवीज हुआ वो उसको उसका रिजल्ट इंशाल्लाह देगा।
1: चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब।
1: की में हाल है? ठीक ठाक। बिल्कुल जी आंदी पई। कौन थे कितो गाल करें दे पे?
2: मुश्ताक टाउन के चले ना भैया
1: जी। हाजी साहब की में हाल है? ठीक ठाक। वदे तबीयत सी ठीक है तुम्हारी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ना तबे दे सोने है। प्लीज सर ले पता करना है।
1: हां जी,
2: मैंने तो सारी दीवार बैठे का काम है, मैं साइकिल भी चले मैं तुरंत फिर दवा,
1: ठीक है।
2: लेकिन ना फुलतल जरा पेट भाई से ये लड़क दवा
1: ये लड़क दवा ने जी कम के रख रहे हैं तो हाजी साहब
2: तकरीबन 52-53 साल
1: है भाई पेट पर लड़क दवा ने
2: तकरीबन पेट बन गई।
1: अच्छा,
2: दोनों दिन तले जरा है ना थोड़ा लड़कन लग गया।
1: ठीक है हाजी साहब, बेहतर तो ये हो सी हकीम से बने तो कोई मशवरा दे सें जो जरा तेरा पेट लड़क दा पी है इसका इलाज वास्ते तुसा शवाल मार्केट दे डिठी उसी टांग दे विच। ठीक है जी, शवाल मार्केट दे अंदर आखिर दे हकीम से बने मौजूद होने फदर ले आर्टिकल चाह के ते दीगर 4 बजे तक। ठीक है डेफिनेशन ही करके दे सें। ठीक है जी, इंद्र गाल ही करेने मशवरे करेने हकीम साहब नाल ते बेहतर है तुसा इलाज दे तरफ आओ। ठीक है जी, मजीद रेडियो सुन दे रहो तुसा जी। हकीम साहब पेट का लटकना दर्जी भाई है हमारे, हाजी साहब पूछ रहे हैं सो क्या मशवरा
0: है। बाज दफा ऐसा होता है की काम इनका ज्यादा बैठने का है और बाज दफा ये होता है की हमारा खाने का शेड्यूल बड़ा खराब होता है।
1: ऐसी बात
0: यानी हमने काम को देखना होता है, खाया पिया वहीं बैठ गए फिर दोबारा। कुछ वजूहत तो ये भी हो जाती हैं,
1: ठीक है।
0: कुछ वजूहत ये होती हैं कि पेट में फालतू चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, उससे भी ये चीज पैदा हो जाती है। लेकिन इसके लिए बेहतर तो तरीकाकार यही है कि आप क्योंकि टाउन सिटी में हैं तो अगर ये बेहतर हो जाए कि आप चंद लम्हे निकाल के तो अगर मिल लेते हैं तो एक तो इनकी बॉडी का इनके मिजाज का
1: हाँ जी
0: उससे अंदाजा हो जाएगा,
1: ठीक है।
0: और फिर इन्हें देख के बेहतर तरीके से मशवरा भी मैं दे सकूंगा। देखिए बात होती है कि माइक पे बैठ के हम उस लिहाज से सिर्फ एक टेम्परेरी उसको हिंट्स दे सकते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: उसको बता सकते
1: हैं देखे।
0: लेकिन जब मरीज मतब पे या दवाखाने पे आता है तो बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि एक मरीज पे आधा आधा घंटा भी लग जाता है। उसकी वजह होती है कि जब तक केस उस पूरी तरह सामने नहीं आएगा,
1: ऐसी बात है,
0: उसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो उसकी तशखीस ही नहीं होगी तो फिर नुस्खा भी तजवीज नहीं हो सकता। लिहाजा बेहतर तो यही होता है कि मैं तो अपनी बहनों को अपने भाइयों को यही मशवरा देता हूँ कि यार अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने लिए आपने निकालना है, अगर हो सके तो आप खाली मशवरा कर लें,
1: ठीक हो गया,
0: वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल होता है कि आपको स्टेप उठाने में आसानी हो जाती है कि मुझे ये पता चला है तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ।
1: ठीक हो गया। सो बिल्कुल खवातीन हजरात, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सो बिल्कुल जनाब, ये प्रोग्राम आप समाज फरमाते हैं अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से। इंशाल्लाह हकीम साहब सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक कल अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे, यानी कि अलशिफा

ओके जी। और मेरे प्यारे भाई जान एक बार फिर से वेलकम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है भाई। इस बात के पीछे सही हंसा की कम बोलो भाई, मैं सही ज्यादा बोलती हूँ। आई एम मनाल से, बस मक्के में खबर उकड़न हो तसबावरी दिली विजी उम्मीद दादा जी तसब पीछे खासी देर मनाने से। और बोलो बच्चे माशाल्लाह डे जबरदस्त से और नसीहत नटके खबर दे वकड़ी छ सदी ओ वेल बिल्कुल सदी ओ वेल वेरी गुड। अल्लाह दे रुता कामयाबलरा گل بھائی جان ڈیرے زبردست خبر دی اکڑی گل بھائی کسم چی زما امی داسی داسی دا زما